ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा हो गुरबाणी गावो भाई अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गाव पाई सुख सहज आनंद गाना, तब जपते हैं दुख जाए

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया है सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सात संगत तेरी कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं,

जिति किसे बादशाह का घर नहीं और वो था है आनंदपुर साहब आपको सदनाम जिते कलगियां वाला पातशाह है तो मैं ये भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करते सुने उन्ना बवंजा कवि रखे सुजान चंद मैं तेरा दोस्त।

आप सारे गुरु के पास सजे हो। इसी तरह संगता सजियां, संगता भी पीड़ लग गई वारी वारी, सारे मत्था टेकते हैं गुरु की आशीष लैके।

ही सेवा करता है, पता नहीं क्यों आए, बोलना काटा है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

सिर्फ संगता समेत सुजान चंद ने इस पिंड वाल चल पे पिंड के लोगों पता लगा सुजान चंद पता लगा

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन को दवाई दे इस जान चल सोच जे माई नाल जाव तो फिर दर्शन नहीं हो अगे बड़ा तरस है पता नहीं और कितना तरसना पवेगा संगत इतो लंघदिया ने दर्शन कर जा दर्शन करके आदि ने उन्होंने खुशी चाहिए।

अमृत शकंग के पता नहीं की करना पवित्र कुछ नहीं करना पैदा बाणी पढ़ उच्चा सुचा जीवन रखना नशिया का त्याग करना यही अमृत है यही अमृत की दाल के नाल मिलता है। छल प्रेम नहीं करना झूठ नहीं बोलना।

दूसरे बादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिया बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

जिदे कोल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कोल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी है, कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

एक जोगी जिन्हें तपस्या कीती ते वर प्राप्त कीता, मैं जिन्हू चाहवां

शहर आके लंगर छक गए, पर एक आदमी बड़ा हंकारी जापदे, ओ लंगर छकन वास्ते नहीं।

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु को मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ खोलिया।

कुआं बंद कर ले, चेले वापस आए। जोगी कहन लगा एक बारी फेर जाओ, तिलकुन आखो।

एक इन्नी शक्ति दा मालक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा। जोगी आसन ला के बह गया। रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन। उन रिधियां सिद्धियां दे

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुने भाई दिल कुछ उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनी जाना वार देंदे, गुरु दे चरना तो कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा। बुआ खोले सामने भाई तिलकू दे।

जोगी जेड़ा सी कहन लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा है जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता है उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता भाई तिलकू जी कहन लगे मेरे गुरु मेरे नहीं होते सारियां दे सांझे ने उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहब है जोगी कहन लगा ओ रहंदे किथे ने भाई तिलकू जी कहन लगे ओ श्री अमृतसर रहंदे जोगी ने कहा तिलकू चल फिर मैनू अपने गुरु को ले चल भाई तिलकू जी ने

इस जोगी ने पाई दिल को देनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल करो।

जिन सतगुरु नाल प्यार ओ सज्जन जिदा प्यार गुरु दे नाल है नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओ दे नाल करो जिहड़ा

ने दोस्ती उथे करो जिथे निभा सको ते निभ सके दोस्ती ओ दे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे ए ठीक है के भला करो जरूर पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे ता उथे भला करो जिथों भलाए

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताई तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुक के सुट दे। जदू सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देने। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे, साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे पासे कीता ते नाले किया।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा

मां ने असिस्ट स्टेशन पर ले लिया। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, ते जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: पापा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन चल लग रहे थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उथे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

सतगुरु अर्जुन देव पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं कि ये संसार एक दंगल है और इस दंगल दे विच पांच पहलवान खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कोई काम तो बचता है तो क्रोध दे वश हो जाता है, क्रोध तो बचता है तो लोभ दे वश हो जाता है, लोभ तो बचता है मोह दे वश हो जाता है, हंकार इसनू डेग लैंदा है। ये पांच पहलवानड़े ऐसे हैं जो हर एक नू डेग देंदे हैं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि इना पंजा पहलवाना तो मैं किवें फतेह प्राप्त कीती, ओ है गुरु दी बख्शिश। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मेरी पिठ ते मेहर भरिया हाथ रख दिता। वात वजन टमुक पेरिया मल लथे लेंदे फेरिया, निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दिती। कंड जी गुरु दी बख्शिश दा सदका।

थारे ही जीव अकाल पुरख वाहिगुरु ने इकट्ठे भेजे हैं। ए संसार एक बाजार है जिथे जीव वणज करन लई आए, सौदा करन लई आए। जिन्हां ने इथे आके सच दा वणज कीता, सेवा सिमरन परोपकार कीता, ओ ता लाह खट के गए। ते जिन्हां ने इथे आके निरी माया दी ही खेड खेडी है, हजूर कहंदे हन ओ अपना मनुछा जन्म एवे व्यर्थ गवा के जाने। क्योंकि संसार एक रंग भूमि है जिथे हर जीव आपो अपनी खेडां विच रुझिया होया। हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगत सगल जगत। दाई दाया कहंदे हन खिडाउन वाले नू, दिन अते रात इस मनुख नू खिडा रहे हैं और सारा जगत इस विच खेड रहे हैं। और जेड़ी जेड़ी भी कोई खेड खेड रहा है, अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक दी खेड नू बड़े गहो नाल तक रहा है, बड़े गहो नाल लिखिया जा रहा है। जिन्हां ने इथे आके नाम दी खेड खेडी, ओ ता निरंकार दे चरणा दे नेड़े हो गए, उदी प्रसन्नता दे प्राप्त हो गए। जिन्हां ने मेरी माया दी ही खेड खेडी है, ओ मालिक दी बख्शिश तो दूर हो गए। हजूर दा वचन है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे, धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेरे के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां ने इथे आके नाम दी गालना कीती, नाम दा वणज कीता, ओ लाह खट के जानगे। इसलिए हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई मरण दे बाद भी कोई जीवन है, गल मुक नहीं जांदी। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि साकत पुरशां दा, पापियां पुरशां दा भी मरण दे बाद जीवन है, गुरमुखां दा, सत पुरशां दा, महापुरखां दा भी जीवन है। पापी दा जीवन कैसा है, हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई पापी साकत पुरुष जो है ओ पहला ता अपना मनुछा जन्म ही नरक बना लैंदा, ते जदों अपनी औधी समाप्त करके जांदा है, उस लई कुंभी नरक फिर तैयार है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, तिन्ना मुख डरावणे, ए साकत पुरशां लई है। फरीदा तिन्ना मुख डरावणे, जिन्हां विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे थोर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म रह। ए ता है साकत पुरशां दा जीवन। ते गुरमुखां दा जीवन कैसा है, भले पुरशां दा जीवन कैसा है, हजूर कहंदे हन के अंतर गुर आराधना। गुरमुख जन जो हन ओ मन करके भी जपदे हन और रसना द्वारा भी जपदे हन श्री वाहे गुरु, और नेत्रा द्वारा गुरु का दर्शन करदे हन, कन्ना द्वारा गुरु की बाणी श्रवण करदे हन। इसलिए ऐसे गुरमुख नूं किथे निवास मिलदा, हजूर ने मोहर लगा दिती। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या, रत्या तो भाव है सतगुरां दे चरणां विच जो जुड़दे हन उनां नूं किथे थां मिलदी है। सतगुर सेती रत्या, दरगह पाईऐ थाउ, दरगाह विच ही निरंकार उनां नूं अपने चरणां विच वासा बख्शदा। इसलिए जीव सारे ही आए हन, पर जो नाम दा वणज करके जाणदे उनां दा मुख एथे भी उजला है, ते दरगाह विच भी उजला होएगा। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है।

ऐसा निर्मल जल होंदा है, रोगी शरीर नू अरोग कर देंदा है। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा है, अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा है। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे।

प्रभु दे चरणां दी प्राप्ति हुंदी है जिथे, उत्थे माड़े कर्म करन दे नाल जीव नरकां दा भागी बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री साहब जी कहंदे हन, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, वही आखदे हन खाते नू, ओ जेड़ा खाता जिदे विच तू लेख लिख रहे हो, चंगे लिख ले या पावे मंदे लिख, अच्छे लिख पावे बुरे लिख। ताई बाबा फरीद कहंदा है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख न लेख, जे लिख बैठे ता आप नड़े गिरिबान में सिर नीवा कर वेख। हुण वेला है आ कीते हुए गुनाह कीते हुए पाप बख्शा लै, संगत विच आ के नाम जप के संगत दी सेवा करके तेरे कीते हुए पाप लै जाणगे। जे इत्थे नहीं बख्शावेंगा ता फिर दरगाह विच तेरा लेखा खड़ोता है। कई कहंदे हन ना, ए जग मिठा अगला किस डिठा, ते गुरु नानक पातशाह कहंदे ने, जे मेरी सुमति लेनी है, कोई आम बंदा आखे ता बेशक झूठ मन लो, लेकिन गुरु नानक पातशाह दे इस कथन नू किवें झूठा करोगे। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, उथे तेरी वही कड्डी जाएगी तेरे लेखे जो तू लिखे, तू आप लिखे किसे होर ने नहीं लिखे। इस वास्ते हुण मनुच्छा जीवन है, नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै, नहीं तां साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे।